0: The difference is the music.
1: Swan 99.9.
2: तर्ज सी कहीं दूर जब दिन डल जाए तो जो दिन डल जाता तो केड़े-केड़े ख्यालों बिच्चों लंघ के जाने तो जगजीत सिंह का गाया हुआ गीत वो लाइव शो चो लिया हुआ वो सुनाने तो सुन रहे हो अपना मन पता पंजाबी गीतों का प्रोग्राम मेला गीतों का स्वाद 99.9 FM तो शाम कुमार के नाल